ये तस्वीरें हैं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जहां कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो भीषण भूकंप आए, जिसमें अब तक कम से कम 164 लोगों की मौत हो चुकी है और हजार से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन यह संख्या और बढ़ने की आशंका है। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसके कुछ सेकंड बाद ही 7.5 तीव्रता का

0: दूसरा भूकंप आया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। भूकंप में कई इमारतें ढह गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए, लेकिन जो नहीं निकल पाए उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। कई लोगों के रिश्तेदार और दोस्त लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमरजेंसी सर्विसेज और स्थानीय वॉलंटियर्स तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूकंप बुधवार को स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6:04 पर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्सी रॉड्रिगेज से वादा किया है कि अमेरिका ऐसे वक्त में वेनेजुएला की पूरी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद की पेशकश की है। रॉड्रिगेज ने उन सभी देशों को धन्यवाद कहा है जो इस मुश्किल घड़ी में जरूरी मदद और इक्विपमेंट्स मुहैया कराने के लिए आगे आए हैं।
1: मैं बताना चाहती हूं कि इस ताकतवर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य लागवेरा है। कई इमारतें तबाह हुई हैं। हम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन जिंदगियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी ऊपर वाले को मंजूर है। ये वाकई बहुत बुरा हादसा है। इस मुश्किल वक्त में मैं उन परिवारों को सांत्वना देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है।
0: लोगों ने बताया कि जब भूकंप आया तो कैसे उनके आसपास की दीवारों में अचानक दरार पड़ने लगी और लोग डर के मारे चीखते हुए अपने घरों से भागकर बाहर सड़कों की तरफ दौड़ने लगे। जब यह हादसा हुआ तब वहां क्या मंजर था, देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणा अयंगर की इस रिपोर्ट में।
2: वेनेजुएला की राजधानी कराकस में तबाह हुई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के मलबे से इमरजेंसी वर्कर्स घायल लोगों को निकाल रहे हैं। लोग घबराए हुए थे और अपने प्रियजनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें कराकास में रह रहे बीबीसी रिपोर्टर के फ्लैट की हैं। वेनेजुएला के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जबरन बंद करना पड़ा। कराकास के चेकाव में ढही हुई इमारत के बाहर लोग जमा हुए। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जमा लोग अपने परिवार वालों को आवाज दे रहे थे। कराकास के पश्चिम में मौजूद सैन फिलिपे सिटी में 7.2 तीव्रता का भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 6 बजे आया। इस भूकंप के एक मिनट के अंदर अंदर 7.5 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया।
3: ये ऐसे समय में हुआ जब लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि कराकस में छुट्टी थी। भूकंप के काफी तेज झटके आए। मैंने अपने घर की चीजों को गिरते हुए देखा। मेरी बिल्डिंग और पड़ोस में काफी नुकसान हुआ है। मेरे एक पड़ोसी तो गिर गए और उनके हाथ टूट गए।
2: भूकंप से कितना नुकसान हुआ ये सामने आने में कई दिन लग सकते हैं। अधिकारियों की आशंका है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। बीबीसी संवाददाता अरुणा अयंगर की रिपोर्ट।
0: किन इलाकों ने कितना नुकसान झेला है इसकी पूरी तस्वीर सामने आने में अभी वक्त लग सकता है। वैसे भौगोलिक स्तर पर बात करें तो वेनेजुएला एक ऐसे जोन में है जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। यहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इस मैप को देखिए। इस मैप पर दूसरे नंबर वाली जो प्लेट है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, जो दूसरे नंबर वाली प्लेट है ये वो प्लेट करेबियन प्लेट है और 13 नंबर वाली ये वाली जो प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। वेनेजुएला इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद है और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दूसरा झटका जो ज्यादा ताकतवर था वो शैलो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से हुआ। ऐसा तब होता है जब प्लेटों के बीच मौजूद दरारें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खिसकती हैं। जब ये हलचल अचानक और तेज होती है तब भूकंप आता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस बात की 44% आशंका है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने कहा है कि उन दो भूकंप के बाद अब तक कम से कम 30 आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए हैं। वहां के जमीनी हालात पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट।
4: वेनेजुएला में इतना ताकतवर भूकंप बीते कुछ सालों में महसूस नहीं किया गया। ये 1967 में वेनेजुएला की राजधानी कराकस में आए उस भूकंप की याद दिलाता है जिसने इस शहर के लोगों को काफी गहरे जख्म दिए हैं। लेकिन यहाँ आफ्टरशॉक्स की फिक्र बनी हुई है। इसलिए कई लोग अभी भी अपने घर के बाहर ही ठहरे हुए हैं।

0: क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि अंदर जाने पर वो सुरक्षित होंगे। देश के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी गैस लीक के खतरे की वजह से लोगों को घर के बाहर ही रुकने को कहा है और इलाके में गैस की सप्लाई बंद की हुई है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। अभी भी कहा नहीं जा सकता कि तबाह हुई इमारतों के नीचे कितने लोग फंसे होंगे। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
1: और खबर अब अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब से दो हफ्ते बाद ही नेटो का सालाना समिट तुर्की में होने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि नेटो के सदस्य देशों ने उन्हें निराश किया है क्योंकि इन देशों ने ईरान युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने अलग अलग देशों का नाम भी लिया लेकिन खास तौर पर ब्रिटेन और इटली की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि उन्हें इन देशों से ज्यादा भरोसे की उम्मीद थी।
2: इस पर हमें किसी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हमने पहले हफ्ते में ही उन्हें तबाह कर दिया था लेकिन अच्छा होता अगर उन्होंने मदद की पेशकश की होती। उन्होंने कहा तक नहीं लेकिन सेक्रेटरी जनरल के तौर पर और ये पूरे अभियान के प्रमुख भी हैं। मेरा मानना है कि अगर मैं इन्हें फोन करता जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अलग अलग देशों से बात कर रहा था जिससे मैं उनका रुख समझ सकूं और देख सकूं कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इन्हें फोन करता तो शायद ये जरूरत पड़ने पर मदद का कोई रास्ता निकाल लेते। मुझे लगता है कि तब स्थिति कुछ अलग होती।
1: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तुर्की जाएंगे और वहां अपने समकक्ष रेचप तैयब अर्दवान से मुलाकात करेंगे। वो इस मीटिंग में तुर्की को एडवांस्ड स्टेल्थ विमान यानी F-35 लड़ाकू विमान देने पर चर्चा करेंगे। वहीं मार्क रूटे का कहना है कि ये नेटो के लिए डिफेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी के भविष्य पर चर्चा करने का एक अहम मौका होगा।
3: दो हफ्ते बाद अंकारा में सिर्फ 7 देशों के नेता नहीं होंगे, वहां 42 देशों के नेता जुटेंगे। इनमें अमेरिका समेत 32 सहयोगी देश होंगे। इनके अलावा मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 9 या 10 देशों के नेता भी शामिल होंगे। मैं जानता हूं आपने ईरान के मामले में जो कुछ किया, डिफेंस को लेकर क्या रणनीति रही और इसका क्या नतीजा रहा, इन सब पर आप बात करेंगे।
1: अब एक राहत देने वाली खबर, कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम थोड़ी देर के लिए $72.48 प्रति बैरल तक पहुंचे लेकिन उसके बाद फिर से इसकी कीमत $73.23 हो गई। ईरान जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब तेल की कीमतें इतनी कम हुई हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के संघर्ष के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। पिछले हफ्ते जैसे ही अमेरिका और ईरान ने 60 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरने लगी। जो ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे वो अब वहां से अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ऑयल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि कुछ दूसरे जानकार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि अभी भी कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
4: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान्य तौर पर रोजाना करीब 130 जहाज गुजरते हैं। इन जहाजों की आवाजाही को सामान्य करने में 3 अहम परेशानियां हैं। पहला मुद्दा स्ट्रेट से गुजरते वक्त जहाजों की सुरक्षा का है जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। हालांकि ये कब तक चलेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा मुद्दा खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसे संघर्ष के दौरान काफी नुकसान पहुंचा। उत्पादन को फिर से पूरी क्षमता तक पहुंचाने में अभी कितना वक्त लगेगा ये भी पता नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो जहाज ऑयल मार्केट में थे उनमें से कितने दूसरे मार्केट में चले गए क्योंकि संघर्ष की वजह से उन्हें यहाँ काम नहीं मिला। मेरा मानना है कि अगर ये शांति समझौता कायम भी रहता है तब भी हालात को पूरी तरह सामान्य होने में काफी लंबा वक्त लगेगा।
1: यूरोप के कुछ हिस्सों में हीट वेव का दौर आज यानी गुरुवार को भी जारी रहा और इसके पूर्वी यूरोप तक फैलने का भी अनुमान है। फ्रांस के मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि देश के केंद्र और उत्तरी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तक पहुंच सकता है। देश के पश्चिमी हिस्सों में हजारों घरों तक बिजली नहीं पहुंची। भीषण गर्मी की वजह से पेरिस के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे लूवर म्यूजियम को भी समय से पहले बंद करना पड़ा। ब्रिटेन में भी हालात काफी गर्म रहे। कल यानी बुधवार का तापमान जून के महीने में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान था। देश के एक हिस्से में तो पारा 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। वहीं उत्तरी स्पेन और इटली के कई हिस्सों में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया और इस हफ्ते के अंत तक जर्मनी, नेदरलैंड्स और बेल्जियम में भी तापमान बढ़ सकता है। इस बीच यूरोपियन ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि इस हीट वेव के दौरान बिना वेतन में कटौती किए हुए कर्मचारियों को कूलिंग ब्रेक

0: लेने का अधिकार दिया जाए। क्लाइमेट को लेकर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने चेतावनी दी है कि वैश्विक नेता इससे निपटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं।
1: And now we're living the hottest days ever recorded in Great Britain and in other parts of the world.
2: आज हम ब्रिटेन और दुनिया के कई हिस्सों में सबसे गर्म दिनों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि वैश्विक नेता कहें बस बहुत हुआ, अब हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। और ऐसा कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
1: Not complicated. We continue to burn fossil fuels without capturing the emissions.
2: लेकिन हम लगातार फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं और उससे निकलने वाले उत्सर्जन को रोक नहीं पाते और पृथ्वी को और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं जिससे वो गर्म हो रही है। और ये बात जॉन कैरी या कोई राष्ट्रपति या कोई नेता नहीं कह रहा, ये साइंस है, फिजिक्स है, गणित है। हमें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे सुलझाने के लिए सही कदम नहीं उठा रहे जो हम आसानी से उठा सकते हैं।
0: बच्चों को गर्मी लगे तो वो पानी में खेल के खुद को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, लेकिन गर्मी का हमारे शरीर पर जितना असर होता है उसका ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होता। यूरोप में भी गर्मी कहर बरपा रही है। ऐसे में बीबीसी संवाददाता फर्गस वॉल्श बता रहे हैं कि इस भीषण गर्मी का हमारे शरीर पर क्या असर होता है और हम खुद को ठंडा रखने के लिए क्या कर सकते हैं।
3: खुद को ठंडा रखने के कई तरीके हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे और शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इससे जल्दी थकावट हो सकती है। इसमें ज्यादातर पसीना, स्किन का पीला पड़ जाना, उल्टी, चक्कर आना या बेहोशी महसूस हो सकती है। यूके में सेंट जॉन एम्बुलेंस एक जाना पहचाना नाम है। वो हर मौसम में होने वाले पब्लिक इवेंट में मदद और फर्स्ट एड देने के लिए मौजूद रहते हैं। अगर आपको गर्मी से बेहाल थका हुआ शख्स दिखे तो उसके लिए क्या सलाह होगी?
4: सबसे पहले उन्हें छांव में ले जाएं और अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहने हैं तो उन्हें उतार दें। अगर ठंडा पानी हो तो उन पर छिड़के और पंखे से हवा कर पाएं तो अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए उनके पैर थोड़े ऊपर उठा दें और अगर वो होश में हैं तो उन्हें कुछ पीने को दें। पानी सबसे अच्छा रहेगा।
3: आपको एम्बुलेंस कब बुलानी चाहिए?
4: अगर 30 मिनट के अंदर उनकी हालत नहीं सुधरती तो आपको एम्बुलेंस बुलानी चाहिए और उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए।
3: असली खतरा यह है कि गर्मी से हुई थकान से आगे चलकर हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। शरीर का बहुत ज्यादा तापमान, त्वचा का गर्म होना लेकिन पसीना न आना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, धड़कन का तेज होना और सांस फूलना या बेहोश हो जाना इसके लक्षण हैं। बेहतरीन एथलीट लंदन की सेंट मैरी यूनिवर्सिटी में इस एनवायरमेंटल चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो तेज गर्मी या ठंड वाले इवेंट से पहले खुद को ढाल सकें।
2: हमारे पास यहाँ तापमान और नमी को कंट्रोल करने की क्षमता है।
3: हीट वेव के दौरान हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती ज्यादा उमस है।
2: जब उमस होती है तो हवा में नमी भी ज्यादा होती है, जिससे शरीर की गर्मी कम करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। क्योंकि हमारी त्वचा से पसीना भाप बनकर नहीं उड़ पाता, इसीलिए पसीना शरीर में ही बना रहता है। इससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यही असली परेशानी है।
3: गर्मी में हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, बच्चों और युवा पीढ़ी को होता है, या फिर गर्भवती महिलाओं को, या उन्हें जिन्हें दिल या फेफड़ों की कोई बीमारी हो। बीबीसी संवाददाता फर्गस वॉल्स की रिपोर्ट।
0: और अब बात उस आइकॉनिक डॉल की जिसके पास अपना घर था, फैशनेबल कपड़े थे, कार थी, हाँ वही बार्बी डॉल जिसे आप बचपन में आपने देखा होगा या कभी खेला भी होगा। आखिर बार्बी डॉल की कहानी कैसे शुरू हुई, देखिए बीबीसी संवाददाता पॉलिन मैकलीन की इस रिपोर्ट में।
5: बार्बरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स, जिसे सब बार्बी के नाम से जानते हैं, उसे पहली बार 1959 में न्यूयॉर्क टॉय फेयर में लॉन्च किया गया था। ये बार्बी के शुरुआती मॉडल्स में से एक है जो अब एक कलेक्टर्स आइटम बन चुकी है, लेकिन अब ये बार्बी की स्कॉटलैंड की पहली एग्जीबिशन का केंद्र भी है।
6: मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इस प्रोजेक्ट में बतौर बार्बी की सुपर फैन होने की वजह से जुड़ी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मैं ओपन माइंड से आई थी, ये मानते हुए कि इसका सामाजिक पहलू काफी दिलचस्प है, क्योंकि बार्बी डॉल या उसके इतिहास के बारे में जो भी राय हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस डॉल का 20वीं और 21वीं सदी के पॉप कल्चर पर बड़ा असर रहा है, और हम इसी को इस एग्जीबिशन में दिखाना चाहते थे।
5: ओरिजिनल डॉल्स को बेचने के लिए फैशन का इस्तेमाल किया जाता था, ये काफी समझदारी भरा कदम था। 1962 में बार्बी का अपना घर भी आया, ये उस समय

0: फीमेल इंडिपेंडेंस का सिंबल था जब युवा सिंगल अमेरिकी महिलाओं के लिए घर के लिए लोन लेना शायद संभव नहीं हो पाता था 1978 में बारबी का घर था अमेरिकी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना जिसे बनाने का ख्वाब बारबी के क्रिएटर रूथ हैंडलर देखा करते थे लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया और डॉल भी ऑडियंस की डाइवर्सिटी के मुताबिक बदलती रही
1: मैं 80 के दशक की सारी बारबी देखकर एंजॉय कर रही हूँ मेरी बेटी 2000 के दशक की बारबी की सभी एक्सेसरीज देख रही है हमें ये बहुत अच्छा लगा अलग अलग डेकेड्स में बिताए अपने बचपन को साथ मिलकर शेयर करना काफी अच्छा है लोग कहते हैं बारबी सिर्फ दिखावटी है लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो हमेशा से एक आगे बढ़ने वाली और नई राह बनाने वाली रही है
0: ग्लोबल आइकॉन बनी बारबी के लिए अपना जादू बिखेरने के लिए एक खुला आसमान है बीबीसी संवाददाता पॉलिन मैकलिन की रिपोर्ट
2: बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

0: एक डिटेल्ड इंटरव्यू करिए ताकि बहुत कुछ जड़ा सानू नहीं पता वो पता लग सके। रीत थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी स्टूडियो चौन ले।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: अज की गलबात बस इन्नी, एक नवी मुलाकात लेके फिर हाजिर होवांगे। तद तक मैनू सबली इनकॉर जसर नू दे दो इजाजत। सत श्री अकाल।